0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने सलामती तआवुन के अपने फ्रेमवर्क के तहत कम्बोडिया को दिफाई साजो सामान फराहम करने का फैसला किया है। कम्बोडिया की वजारत दिफा में इतवार के रोज माहिदों पर दस्तखतों की तकरीब मुनाकिद हुई। इसमें कम्बोडिया में जापान के सफीर उवेनो आसुशी और कम्बोडिया के वजीर दिफा टी ए साहा ने शिरकत की। ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी ओएसए फ्रेमवर्क दिफाई साजो सामान और दीगर मवाद की पेशकश करके हम ख्याल ममालिक के साथ सलामती तआवुन बढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम के तहत कम्बोडिया के लिए ये पहली फरामी होगी। जापान 500 मिलियन येन या तकरीबन 3 मिलियन डॉलर के मवासलाती आलात और गश्ती कश्तियां फराहम करने का इरादा रखता है। जापानी हुकूमत ने फिलिपाइन को ओएसए प्रोग्राम के जरिए साहिली निगरानी के रेडार सिस्टम फराहम किए हैं। मार्च में उसने थाईलैंड को आफात के खिलाफ रद्द अमल और इमदाद व बचाव के आलात फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया था। कम्बोडिया मिलिट्री कम्युनिकेशन स्कूल कायम करने का इरादा रखता है और जापान की बरी सेल डिफेंस फोर्स के साथ तआवुन का भी मंसूबा बना रहा है। जापानी सफीर ने दस्तखत की तकरीब के बाद एनएचके को बताया कि उनका ख्याल है कि ओएसए के जरिए जापान और कम्बोडिया के दरमियान सलामती तआवुन एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कम्बोडिया के साथ तआवुन के ठोस तरीकों पर मुशावरत करना चाहेंगे। मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को 0 के मुकाबले में एक गोल से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर लिया। इतवार को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर के स्पेन और टॉप रैंक वाले अर्जेंटाइन के दरमियान मैच हुआ। मैच पर शुरू से ही स्पेन हावी रहा और दाएं जानिब से बार बार हमले किए। टीम की क्यादत 19 साल फॉरवर्ड लामीन या महल और मिडफील्डर रोड्री कर रहे थे। दोनों टीमों ने मजबूत दिफा का मुजाहरा किया जिसमें 90 मिनट का खेल बगैर किसी गोल के बराबर रहा और फैसले के लिए इजाफी वक्त दिया गया। मुतबादल के तौर पर खेल में शामिल होने वाले फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए फैसला कुन गोल करके इस तातुल को तोड़ दिया। स्पेन 4 टूर्नामेंट्स में पहली बार चैंपियन बना है जबकि अर्जेंटाइन मुसलसल टाइटल जीतने वाली तारीख की तीसरी मर्दों की टीम बनने में नाकाम रहा। अर्जेंटाइन के स्टार लियोनेल मेसी को अपना खेल खेलने से रोकते हुए स्पेन ने फाइनल मैच के ज्यादातर वक्त पर अपना काबू रखा। मेसी ने 8 गोल के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। फ्रांस के किल ए हान बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए। वो दो बार वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो आपको है कि अक्वाम मुत्तहिदा की सकाफती एजेंसी यूनेस्को जापान के कदीम दारुलहुकूमतों के आसार कदीमा मकामात और उनसे मुतल्लिका अमलाक को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करेगी। यूनेस्को ने इतवार को जनूबी कोरिया के शहर पुसान में अपनी आलमी सकाफती विरसा कमेटी के इजलास का आगाज किया। जापान की हकूमत ने मगरबी प्रिफेक्चर नारा में वाकया आसुका और फुजीवारा के कदीम दारुलहुकूमतों को फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की है। आसार कदीमा के ये मकामात 6 सदी के अवाखिर से 8 सदी के अवाइल तक के हैं। वो आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में हैं। कदीम दारुलहुकूमतों को शामिल करने या ना करने के बारे में बातचीत 24 और 27 जुलाई के दरमियान होनी है। गुज़श्ता माह यूनेस्को के एक मशावरती इदारे ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को आलमी सकाफती विरसा मकामात के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए और उन कदीम मकामात को 4 में से सबसे आला दर्जा दिया जाए। रजिस्टर होने की सूरत में ये मकामात जापान का 27वां आलमी सकाफती विरसा मकाम बन जाएंगे।
1: और अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। जापान भर में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया और मुल्क के कुछ मशरकी हिस्सों में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जापान की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि कांतो कोशिन और तोकाई इलाकों में बारिश का मौसम बज़ाहिर खत्म हो गया है। हुकाम ने कई इलाकों में हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। पीर की दोपहर 2 बजे तक आईची प्रीफेक्चर के टोयोटा शहर में दिन के वक्त का दर्जा हरारत 38.5 डिग्री اور ایبرا کے پریفیکچر کے دائیگو قصبے میں 38.4 تک جا پہنچا. اور امریکی فوجی حکام نے ایران کے خلاف کاروائیوں کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں کا مسلسل نواں دن مشرقی وقت کے مطابق اتوار رات 10 بجے ختم ہوا. اور حکومت جاپان نے سلامتی تعاون کے اپنے فریم ورک کے تحت کمبوڈیا کو دفاعی ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے. این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام اور میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: काइटो टॉम को फोन करता है।
4: もしもし、タムさん。
0: हेलो टॉम सान,
4: इमा दोको नी इरुनो?
0: अभी आप कहाँ हैं?
1: टॉम जवाब देती है,
3: टोके दाई नो नाका नी इमास।
0: घंटा घर के अंदर हूँ।
1: काइटो कुछ हैरत से कहता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर?
1: फिर वो टॉम से कहता है,
4: जा बुक मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी फौरन उधर पहुँचता हूँ।
1: टॉम जवाबन कहती है,
3: वकारिमास्ता।
0: ठीक है।
1: कुछ देर में काइटो टावर के अंदर आता है और इधर उधर नजरें दौड़ाता है। मियाँ उसे देख लेती है और उसे मुखातिब करती है।
3: आह, काइटो।
0: अरे काइटो।
3: कोच्ची कोच्ची।
0: इधर इधर।
1: काइटो फौरन उनके करीब पहुंचता है और कहता है,
4: गोमें ओसोकु नत्ते।
0: माजरत, मुझे देर हो गई।
1: चलें, अच्छा हुआ इन्होंने जल्द एक दूसरे को ढूंढ लिया।
0: घंटाघर सफेद रंग की दो मंजिला चौबी इमारत है। बड़ी घड़ी उसकी सुर्ख छत पर नस्ब है। ये घंटाघर 1878 में तामीर किया गया था।
1: तो आइए आज का मुकालमा एक बार फिर सुनते हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 20 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रेफेक्चर के तोयोटा शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रेफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ लगातार 9 दिनों से जारी अपने अभियानों पर नवीनतम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 9वीं शाम के हमले रविवार को पूर्वी अमरीकी समयानुसार रात 10 बजे तक चले। अमरीकी केंद्रीय कमान का कहना है कि हमलों में ईरानी सैन्य कमान केंद्रों, हवाई रक्षा और तटीय निगरानी स्थलों तथा मिसाइल एवं ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाया गया। उसका यह भी कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों और आम नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के उद्देश्य से ये हमले किए गए। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में विशेष रूप से पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौकन्ना रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने शनिवार को यात्रा परामर्श जारी करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण

सुरक्षा का माहौल जटिल बना हुआ है और ये अप्रत्याशित रूप से बिगड़ सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्षेत्र के भीतर और बाहर स्थित अमरीकी राजनयिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ईरान का समर्थन करने वाले गुट विदेशों में अमरीकी हितों या दुनिया भर में अमरीका या अमरीकियों से संबंधित स्थानों को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी मीडिया के अनुसार मंत्रालय ने आखिरी बार मार्च में विश्वव्यापी यात्रा परामर्श जारी किया था, जब अमरीका, इसराइल और ईरान के बीच जमकर गोलाबारी हो रही थी।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार ने अपनी सुरक्षा सहायता योजना के तहत कंबोडिया को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। रविवार को कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय में एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कंबोडिया में जापान के राजदूत उएनो अत्सुशी और कंबोडिया के रक्षा मंत्री तिया सेइहा ने भाग लिया। आधिकारिक सुरक्षा सहायता यानी ओएसए का उद्देश्य रक्षा उपकरण और अन्य सामग्री प्रदान करके समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत कंबोडिया को पहली बार सहायता प्रदान की जाएगी। जापान 50 करोड़ येन यानी लगभग 30 लाख डॉलर मूल्य के संचार उपकरण और गश्ती जहाज प्रदान करने की योजना बना रहा है। जापान सरकार ने ओएसए कार्यक्रम के तहत फिलीपींस को तटीय निगरानी रडार प्रणाली प्रदान की है। मार्च में उसने थाईलैंड को आपदा राहत और बचाव उपकरण प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की थी। कंबोडिया एक सैन्य संचार विद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है और जापान के थल आत्मरक्षा बल के साथ सहयोग की भी योजना बनाई जा रही है। हस्ताक्षर समारोह के बाद उएनो ने एनएचके को बताया कि उनका मानना है कि ओएसए के माध्यम से जापान और कंबोडिया के बीच सुरक्षा सहयोग एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे सहयोग के विशिष्ट तरीकों पर कंबोडियाई पक्ष से परामर्श करेंगे। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप फाइनल मुकाबले में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीत लिया है। विश्व में दूसरी रैंकिंग वाले स्पेन का मुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में शीर्ष रैंकिंग वाले अर्जेंटीना से हुआ। खेल की शुरुआत से ही स्पेन ने गेंद पर दबदबा बनाए रखा और 19 वर्षीय फॉरवर्ड खिलाड़ी लामिन यमाल और मिडफील्डर रोड्री की अगुवाई में बार बार दाहिने फ्लैंक से अटैक किए। दोनों टीमों के जबरदस्त रक्षात्मक प्रदर्शन के कारण 90 मिनट के खेल में कोई गोल नहीं हो पाया, जिसके बाद खेल अतिरिक्त समय में चला गया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में स्पेन के लिए निर्णायक गोल दागा। स्पेन ने 4 टूर्नामेंटों में पहली बार चैंपियन खिताब जीता है, जबकि अर्जेंटीना लगातार 2 खिताब जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम बनने से चूक गई। स्पेन ने लगभग पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पूरी तरह से खुलने का मौका ही नहीं दिया। मेसी ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 8 गोल दागे, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बापे 10 गोल दागते हुए 2 बार विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी जापान की प्राचीन राजधानियों के पुरातात्विक स्थलों और उनसे संबंधित संपत्तियों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर सकती है। रविवार को दक्षिण कोरिया के पुसान में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र आरंभ हुआ। जापान सरकार ने पश्चिमी प्रीफेक्चर नारा स्थित आसुका और फुजीवारा नामक प्राचीन राजधानियों को इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। आसुका गांव, काशीहारा और साकुराई शहरों में मौजूद ये पुरातात्विक स्थल 6 शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 8 शताब्दी के प्रारंभ तक के हैं। इन प्राचीन राजधानियों को सूची में शामिल करने के संबंध में चर्चा 24 से 27 जुलाई के बीच होने वाली है। पिछले महीने यूनेस्को की एक परामर्श संस्था ने कहा था कि आसुका और फुजीवारा को विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा दिया जाना चाहिए। संस्था ने इन प्राचीन स्थलों को अपने 4 मूल्यांकनों में से सर्वोच्च स्थान दिया है।

0: सूची में शामिल होने पर ये जापान के 27वें विश्व धरोहर स्थल बन जाएंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में तापघात की चेतावनी जारी की है। सोमवार दोपहर 2 बजे तक आईची प्रेफेक्चर के तोयोटा शहर में दिन का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और इबाराकी प्रेफेक्चर के दाइगो नगर में 38.4 डिग्री तक पहुंच गया। मध्यवर्ती टोक्यो में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नमक का सेवन करने, लंबे समय तक बाहर रहने से बचने तथा शिशुओं एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।